0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वंदे मातरम 150वें ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு வந்தே மாதரம்.

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 9:33 கேட்டு ரசிப்பது ட்ரைடம் பிட்ஸ். காத்திருக்க நேரமில்லை. சாட்பாட்டோட தான் இப்போ எல்லாரும் மூவ் ஆகிறோம். சாட்பாட்னா என்ன? செயற்கை நுண்ணறிவு, அதான் ஏஐ. நம்முடைய கேள்விகளுக்கு தானாகவே பதிலளிக்கும் ஒரு கணினி மென்பொருள். இதில் மனிதர்களோட உரை இல்லைனா குரல் வழியாக உரையாடுவது போல வடிவமைச்சிருப்பாங்க. சீமராஜா படத்திலிருந்து பாடல் இதோ. மதுரை எஃப்எம் ரெயின்போ 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9 மெகா ஹெர்ட்ஸில் வரும்.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है.
1: நேரம் 12:22.
2: 150வது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு வந்தே மாதரம்.

0: அடுத்த பாடலுடன் இனி இதை நிறைவு பெறுகிறது இன்றைய சிநேகிதிய நிகழ்ச்சி. மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஜிதா. நேரம் 12:56.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: நேரம் மாலை 5:30.
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
1: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
0: ஆகாஷ்வாணி மதுரை வானொலி நிலையம் மதுரை பண்பலை 103.3 ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 அலைவரிசைகளில் மாலை தண்டல் நிகழ்ச்சியோடு இணைஞ்சிருக்கீங்க தொடர்ந்து இன்றைக்கான மாலை தண்டல் நிகழ்ச்சியில் மலர்களை மையப்படுத்திய திரைப்பட பாடல்களை கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மலர்களை மையப்படுத்திய திரைப்பட பாடல்களோட அடுத்ததாக

0: இனி தொடர்வது 9 மணிக்கான ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: ஆகாஷ்வாணி, ஐ எம் அனுஜா குமார் வித் நியூஸ் அட் 9. The headlines. India and Cyprus agree to establish joint force for combating terrorism. Elevate bilateral ties to strategic partnership. Also sign several agreements to enhance economic cooperation. Government to launch smart border project to make entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. India successfully test launched short-range ballistic missile Agni-1 at Chandipur in Odisha. India dispatches 20 tons of critical vaccine material to Afghanistan to strengthen child immunization program. Quad foreign ministers meeting to be held in New Delhi on 26th of this month. And in IPL cricket, match between Sunrisers Hyderabad and Royal Challengers Bengaluru underway. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, today reiterated their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. Both the leaders held a bilateral meeting in New Delhi today at the Hyderabad House in New Delhi. Following the talks between the two leaders, both sides exchanged various agreements, including an MOU on establishing a joint working group on counter-terrorism and an MOU in the field of diplomatic training between the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service and the Diplomatic Academy of Cyprus. External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval and Foreign Secretary Vikram Misri were among those present in the meeting. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as the Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं. आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से connectivity sunishchit karne ke liye bhi saath milkar kaam karenge.
1: India and Cyprus also decided to elevate their relationship to the level of a strategic partnership and launched a joint task force to strengthen cooperation in areas including infrastructure and shipping. Hailing the decision, Prime Minister Modi said the bond between India and Cyprus has repeatedly stood the test of time.
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं. भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए